एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: आनंद कंद भगवान की
1: जय,
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री चारो भैयन की
1: जय,
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय,
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय,
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय,
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय,
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय,
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय,
0: जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय,
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय,
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय,
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: गो माता की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय।

श्री गोविंद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान अनेक आध्यात्मिक विषयों जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि की व्यापक व्याख्या करते हुए ज्ञान अज्ञान के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। जनार्दन कहते हैं कि सर्वव्यापक सर्वहृदय स्थित ज्योति स्रोत परमात्मा ही ज्ञान है, ज्ञेय है, वह ज्ञान का परम लक्ष्य है। श्री गोविंद के शब्दों में

ऐसे परमात्मा को कुछ लोग ध्यान से, कुछ ज्ञान से, कुछ निष्काम कर्म से, कुछ सतत उपासना से व कुछ महिमा श्रवण से ही जान पाते हैं और अंततः प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं,

जाम दीप जल हल पुर देवता देवन किरदारा बार हो माई माई दे।

0: जाय हो माय माई सोने बिहाय ले जाय।
1: बहुत पुरानी बात है, अमरकंटक में सोन और नर्मदा का ब्याह तय हुआ था। बारात चल पड़ी थी, नर्मदा ने अपनी नाइन जोहिला को सजा धजा कर भेजा कि जरा देखो तो बारात की शोभा कैसी है। जब कुछ देर हो गई और जोहिला लौटी नहीं तो नर्मदा जी खुद निकल पड़ी खोज खबर लेने। देखती क्या है कि सोन और जोहिला आपस में हंस बोल रहे हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाती नर्मदा ने मुंह फेरा और चल पड़ी पश्चिम की ओर। फिर तो वो कुंवारी ही रह गई। उधर सोन पछताते चल पड़े पूरब दिशा में, जोहिला भी फिर सोन के साथ होली।
0: इतना लसुन के माइनर बदिया पाँव पे जनिया जो दे हो माय पाँव पे जनिया ला दे हो माय।
2: कैसी अनूठी कल्पना सजाई है इस लोकगीतकार के मन ने। बात कुछ ऐसी ही है कि शहडोल जिले के एक ही स्थान अमरकंटक से निकली है नर्मदा भी, सोन भी और जोहिला भी, पर ये बहती हैं अलग अलग दिशाओं में।
1: इसी भौगोलिक तथ्य से रचा गया है ये लोक मिथक, जो मध्य प्रदेश में बघेलखंड अंचल में थोड़ा बहुत बदलकर बार बार मिलता है। ऐसी टीस है इस कथा में कि एकदम तरुण हिंदी कवि एकांत श्रीवास्तव की कविता अमरकंटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। जब फैल जाती है रात की चादर, नींद के धुएं में डूब जाते हैं पेड़ फूल और पहाड़, इसकी गहरी घाटियों में गूंजती है सोन की पुकार, नर्मदा ओ नर्मदा ओ नर्मदा ओ, और पहाड़ों के सीने में ढुलकते हैं नर्मदा के आंसू।
2: विंध्य पर्वत श्रेणी में मेकल पर्वत पर बसा अमरकंटक पहले आम्रकूट कहलाता था। इसकी प्राकृतिक सुषमा का अभिभूत वर्णन महाकवि कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। अमरकंटक शताब्दियों से आस्था और उपासना का पुनीत स्थान रहा है।
1: अमरकंटक के पूर्वी छोर पर है सोनमुड़ा। यहाँ एक छोटे से कुंड से रिश्ते जल के धीमे संकोची और क्षीण प्रवाह को देखकर कौन कल्पना कर सकता है कि यही सोनभद्र है।
2: हमारे पौराणिक भूगोल में तीन को महानद माना गया है, शेष नदियां हैं। इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलते हैं। विंध्याचल से निकलकर भारत के हृदय स्थल यानी हिंदी भाषी प्रदेश में अपने उद्दाम वेग से पराक्रम दिखाने वाला अकेला महानद है सोनभद्र यानी सोन।
3: नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः, मेकलोद्भवाय बृहते सर्व पाप हराय च।
1: ये है आग्नेय पुराण वर्णित सोन महात्म्य का शुभारंभ। सोनभद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया है और इसके क्षेत्र को निश्चय पुण्य देने वाला और मंगलकारक कहा गया है।
2: किंतु इस महाप्रतापी सोन को अमरकंटक में शिशु रूप में एक एक डग भरता देखना अनूठा ही अनुभव है। सोनमुड़ा से कुछ ही आगे बढ़कर मेकल पर्वत की खड़ी ढलान पर सोन जैसे उछाल सी भरता है और फिर
4: नीचे लुप्त हो जाता है।
2: इस स्थल पर वर्षों निवास किया है स्वामी गोपाल दास जी ने। उनकी स्मृतियां पुरानी और लगाव गहरा है।
5: वन्य पशुओं का तो वहाँ अगणित सीमा में रहा करते थे। 4 बजे संध्या के समय से तो यहाँ आवागमन ही बंद हो जाता था। उन्हीं की ही चारों तरफ शोर मची रहती थी। इस अमरकंटक क्षेत्र में विश्व विख्यात तपोवन होते हुए भी यहाँ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का भी काफ़ी मात्रा में, जैसे कि ब्रह्मी है और कामराज, तेजराज, भोजराज, बलराज, इस प्रकार जैसे कि शंखपुष्पी है और रुद्रवंती है, गुलबकावली नाम का एक पुष्प है और संजीवनी बूटी भी पाई जाती थी।
1: सोनमुड़ा से कुछ आधुनिक ढंग का

0: सा है यहाँ के विकास कार्य से जुड़े श्री अंबिका प्रसाद तिवारी का।
1: प्राकृतिक दृश्य के बारे में तो जो कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो ये कश्मीर है ही। यहाँ मानसून दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी बदल, कभी बूंदाबांदी, कभी तेज हवा, कभी पानी और कभी हल्की फुल्की गर्मी। भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ विकास करना उचित नहीं है, यहाँ की नेचुरलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी।

0: सोनमुड़ा के नीचे घाटी में लोप के बाद भूमि पर सोन के दोबारा दर्शन होते हैं। पड़ोस के बिलासपुर जिले में पेंड्रा से कुछ दूर सोन बचरवार नाम के गांव में यहाँ एक पक्का कुंड है जो सोन कुंड ही कहलाता है।
1: इस कुंड का जल एक पतली नाली द्वारा बारहों महीने निकलकर खेतों में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख पड़ता है। बस शुरू हो जाती है सोन की प्रकट यात्रा, पहले उत्तर, फिर उत्तर पश्चिम और अंततः पूर्वोत्तर दिशा की ओर।
0: ये यात्रा शांति पाती है बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम की ओर भोजपुर जिले में मनेर के पास हरदी छपरा के सामने, जहां सोन का संगम गंगा से होता है।

0: उद्गम से संगम तक सोन चलता है 784 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 202 किलोमीटर बिहार में।
1: यह भारतीय उपमहाद्वीप का 14वां लंबा जल प्रवाह है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर।
0: इस बीच बारी बारी से आकर इसमें मिलते जाते हैं छोटे बड़े नाले और सहायक नदियाँ। सोन की कुछ प्रमुख शक्ति धाराएँ हैं केवई, तिपान, कुनुक, जोहिला, कैमूरी महानदी, बनास, गोपद, रेड अरिहंद, घाघर, कनहर, पंडा और उत्तर कोइल।
1: समूचे सोन क्षेत्र की भूमि के तीन मुख्य प्रकार हैं, प्राचीन पहाड़ी प्रदेश, पठारी भूभाग और नदियों के रचे हुए मैदान। पहाड़ों में कैमूर कहंजुआ, सतपुड़ा मैकल और भीतरीगढ़ मैकल विशेष उल्लेखनीय हैं।
0: सोन का काफी क्षेत्र अब भी बहुत दुर्गम घने जंगलों तथा वन्य प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ निवास करती हैं अनेक जनजातियाँ।
1: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति का विभोर वर्णन करते हुए साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र नीरव।
2: रेणुका सोन के संगम पर अगोरी नाम का स्थान है, जिसे हम इतिहास के विभिन्न चरणों का साक्षी मान सकते हैं। और यहाँ पर सोन सिर्फ विंध्य की एक अप्रतिम नदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की साक्षी के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ हम एक तरफ कई करोड़ साल पुराने जीवाश्म सलखम नामक स्थान पर देखते हैं, जहाँ पर अपने आँखों से देख सकते हैं पथराए हुए पेड़ उस काल के, जब यहाँ कभी समुद्र बहता था। उसके बाद हम सोन के ही तट पर देख सकते हैं भारशिव नाग काल के, बुद्ध काल के पहले के भी शैव सभ्यता के अवशेष शिवद्वार में, गौरी शंकर बरेला में, और उसके बाद गुप्त काल के, मध्य काल के चंदेल और गहरवार काल के ऐतिहासिक अवशेष कुंडवासिनी तीर्थ, बंसरा देवी, गौरी शंकर, बरेला, गोठानी तीर्थ, अमिला और आगे जा कर के विभिन्न स्थानों पर राजा नल, कंडाकोट, सब सोन के तटों पर बसे हुए ऐतिहासिक स्थल हैं। सोन सिर्फ एक हरी सुनहरी नदी ही नहीं है, इसके तट पर वन्य सभ्यता, वनवासियों की गृहस्थियाँ बसी आदिकाल से अब तक, बल्कि सोन एक पूरी की पूरी संस्कृति है, जो यह बतलाती है कि मध्य भारत में, मतलब गर्म पहाड़ों में, किस प्रकार के लोग किस तरह के जीवन जीते रहे हैं।
0: जनजातीय बोलियों में मुंडारी, खरवारी, बिरहोड़ी, कोरवा, आसुरी, कुड़ुक और गोंडी प्रमुख हैं। आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी और मगही।
1: सोन के मार्ग में पड़ने वाली मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधे जिलों में बघेली ही बोली जाती है।

0: सीधी निवासी श्रीपद दीनाथ श्रीवास्तव इस अंचल में खूब घूमे हैं और एक अनुभव सिद्ध विचार उनके पास है।
1: आज़ादी के बाद से लोगों का दृष्टिकोण बदला है और अब उसको वो एक जीवन धारा के रूप में देखना चाहते हैं कि उससे सिंचाई के लिए पानी मिले, वहाँ पर वन प्राणी वगैरह जो है स्थल ऐसे बने, पर्यटन के लिए कोई स्थानों का चुनाव हो सके।
2: सीधे जिले में ही प्रसिद्ध बगदरा अभयारण्य के पास स्थित है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सीधे के जिला वन अधिकारी डॉक्टर जे के उपाध्याय के शब्दों में,
3: सोन नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल और मगर पाए जाते थे। उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सोन घड़ियाल अभयारण्य का गठन किया गया। ये 1982 से प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्यतया दो जगह पर घड़ियाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भंवरसैन जहाँ के नदी गहरी है और दूसरा हमारा एक स्थल जोगदाहा है जहाँ पर के घड़ियाल काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 124 है। इसे लगा हुआ क्षेत्र हमारा बगदरा अभयारण्य का है जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
0: प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरी गाथा का जन्म भी सोनांचल में ही हुआ था, जहाँ से ये लगभग समूचे हिंदी प्रदेश में रूप बदल बदल कर पहुँच गई।

0: लीलार कहें कि आज इतना नौकाए नदी सोन भद्र पर बा कुल वो पार खुटियावल बा कैसे बरतिया उतर चली गोसाइया।
1: सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के निवासी और लोक संस्कृति मर्मज्ञ के डॉक्टर अर्जुन दास केसरी बताते हैं,
2: आपके मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय संस्कृति का एक प्रकार से संगम हुआ है। यहाँ की जनजातियों का मुख्य नृत्य कर्मा है और कर्मा के साथ साथ कोलों का कोलदहकी है। अगरिया जात यहाँ की बड़ी मशहूर जात जनजाति है, उनका अगरही है, मुसहरों का मुसरही है। इसी तरह से और भी जितनी जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य यहाँ लोकप्रिय हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, यहाँ की संपूर्ण सोन घाटी की संस्कृति एक प्रकार से संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई है। यहाँ कई गाथाएं लोकप्रिय हुई हैं,

0: कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और पायराइट जैसे बहुउपयोगी खनिजों से यह क्षेत्र समृद्ध है।
1: कोयले की बहुतायत के कारण सीधी जिले की बैढ़न तहसील और सोनभद्र जिले में तो जैसे देश की ऊर्जा राजधानी ही स्थापित हो गई है। एनटीपीसी की विंध्याचल वृहद ताप परियोजना के सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री मंजुल तिवारी के शब्दों में,
2: भारत सरकार ने और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सोचा कि क्यों ना हम पावर स्टेशन वहाँ बनाएं जहाँ पर कोयले की इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्धि है। तो इस तरह से सोन घाटी के विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की गतिविधियाँ शुरू हुई। कोयलों की खदानें NCL के सौजन्य से धीरे धीरे बढ़ती गईं और आज 11 खदानें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा NTPC ने 3 परियोजनाएं यहाँ पे लगाई, विंध्याचल परियोजना, सिंगरौली परियोजना एवं रिहन परियोजना, और कुल मिलाकर इसकी जो स्थापित क्षमता है वो करीब 7000 मेगावाट है। इसके अलावा यहाँ पर UP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 परियोजना यहाँ पे लगाई गई, वो खनपरा और ओबरा।
0: अपने उत्तरार्ध में सोन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, खूब चौड़ा पाट और गरजता हुंकार भरता तेज प्रवाह। वो नद है ना, सो पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखलता से बार बार अपना मार्ग बदलता रहा है और वर्षा ऋतु में इसकी प्रलयंकारी बाढ़ की स्मृतियाँ पुराने लोगों के हृदय को अब भी कंपा जाती हैं।
1: भोजपुर जिले के पथार गांव के मूल निवासी देव कुमार मिश्र ने वर्षों सोन तट और समूचे सोन क्षेत्र में बीहड़ यात्राएं कर सोन पर एक अप्रतिम पुस्तक ही रच डाली है। कुछ स्मृतियां उनके शब्दों में,
3: वराज बनने के पहले तो सोन बहुत प्रलय मचाता था और पानी आता था ऐसे जैसे बिल्कुल दीवार आ रही हो। रोहतास जिले में एक मुहावरा ही है, हिरनवाह, बैल को हमारे बैल को हरनवाह हो गया है। कुछ उसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है, बीमारी से आक्रांत पशु उछल कूद करने लगता है, हर काम में अड़ंगा डालने लगता है। हिरण्यवाह नाम है, सोन का ही दूसरा नाम है। हिरण्यवाह बीमारी जो है वो सोन की प्रकृति को उजागर करता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरह से सोन का व्यवहार बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है।
0: यह सहज ही है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास से उपजी शक्ति का प्रयोग इस प्रचंड जलराशि से मैत्री कराने के लिए किया जाता। बिहार के रोहतास जिले में डेहरियान सोन के निकट इंद्रपुरी में है सोन बराज सिंचाई योजना। लगभग 125 वर्ष पुरानी इस योजना की नहर प्रणाली की चर्चा करते हुए डेहरी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी,
4: इस सोन नदी से बिहार क्षेत्र में लगभग 125 साल पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि अंग्रेजों ने डेहरी के निकट एक एनीकट बनाया था और उससे ये पानी लेके नहरों के मार्फत ले जाते थे। इसके बाद जब वो एनीकट बहुत पुराना हो गया तो फिर बिहार सरकार ने एक बराज बनाया वहाँ पुराने एनीकट के लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से फिर ये पुरानी नहरों को जोड़ दिया गया और एक उच्च स्तरीय नहर भी निकाले गए दोनों तरफ ये बराज के, और इससे अब जो है जो ज़िले बन गए हैं भोजपुर, रोहतास और इधर औरंगाबाद और इधर पटना, इन ज़िलों में इससे 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हम लोग कर रहे हैं।
1: सोन नहर की सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग, भूगर्भ जल विकास, उत्पादन और बाजार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार में सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी के नाम से एक स्वशासी निकाय गठित किया गया।
0: इसका कार्यक्षेत्र पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, जहानाबाद और पलामू जिलों में है। इस एजेंसी ने सोन बीज नाम से धान के उन्नत बीज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसने बड़े पैमाने पर हाथ में लिए हैं।
1: इसी नहर प्रणाली के कारण सोन जैसे बिहार की जीवनदायिनी नदी बन गई है। रोहतास जिले के ग्राम पहलेजा के कृषक श्री उदल सिंह कहते हैं,
5: जब से इंद्रपुरी का बांध बंधा है तब से डेहरी ओन सोन से उत्तर और पश्चिम पूर्व वाले लोगों को खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ है। धान होता है और गेहूँ होता है। नहर आने से फसल ज़्यादा होने लगा है।
0: सोन की लहरों से ही एक अन्य रूप में जीवन यापन करते हैं मछुआरे।
6: हमारा नाम सुरेश चौधरी है, रहते हैं इंद्रपुरी में। मछली है, थोड़ा बहुत चलवा पोठिया मिलता है सोन में, रीठा बामी मिलता है यहाँ पर, चलवा बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है। एकरे में बाल बच्चा हमारा जीता है खाता है, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। बस इसी में हम लोग का है कि इसी में जीना है, मरना है हम लोग का।
0: हाल ही में डेहरी आन सोन में सोन नहर पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू हो गई है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता विद्युत

0: श्री ब्रजकिशोर द्विवेदी।
1: यहाँ सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल है जो सोन नदी पर है, उसी पर हम लोगों का यह सोन वेस्टर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बना है। इसमें 4 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.65 मेगावाट है। यहाँ 3 इकाइयाँ रेदर कमीशन हो चुकी हैं, चौथी इकाई भी करीब करीब तैयार है। सो करीब करीब हमारे चारों यूनिट रेडी हैं। 12 महीना हम लोग इससे, जब भी कनाल में पानी रहेगा तो हम लोग उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं, और एक इकाई से प्रतिदिन करीब 40,000 यूनिट हम लोग जनरेट करेंगे।
2: विकास के स्वप्न को सींचने वाली सोन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है बाणसागर बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना।
0: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों के लिए आगत समृद्धि के स्वप्न समेटे इस परियोजना के तकनीकी पक्ष के बारे में बता रहे हैं परियोजना के रीवा स्थित मुख्य अभियंता श्री के अंबाजी राव।
3: इस प्रोजेक्ट में एक है कि ये 63 मीटर हाई डैम है, मुख्य बात, और इसकी लंबाई 1020 मीटर है, और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 5.1 मिलियन एकर फीट, वो काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 56,000 हेक्टेयर मतलब 560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा पानी फैल जाएगा। इसमें ये जो हमारे जो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हम यूज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उसमें 1.48 मिलियन एकड़ फीट हम सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 0.52 मिलियन एकड़ फीट हम MPP को दे रहे हैं जिससे वो हाइड्रो पावर जनरेट किया कर सकते हैं। 435 मेगावाट की क्षमता के हमारे कुल ये 4 पावर हाउसेस में इसका होने का है।
0: लेकिन बड़ी विकास योजनाएं अपनी भरपूर कीमत भी वसूलती हैं, आशाओं के साथ आशंकाएं भी उपजती हैं। बाणसागर परियोजना की संभावित डूब क्षेत्रों में आने वाले सतना जिले के ग्राम झिन्ना के श्री भैयालाल वैश्य का मन इन्हीं में डूब उतर रहा है।
4: हम ये सोच रहे हैं कि हमको कम मुआवजा मिलेगा और हम कहाँ जाएंगे। आज 30 वर्ष हमारी उम्र है, हमारी प्रगत करने वाली उम्र अभी है, और हम आगे कहाँ जाकर क्या प्रगत कर लेंगे, अपने हम बाल बच्चे के लिए भविष्य में क्या उन्नत कर पाएंगे।
2: ऐसी ही उथल पुथल बिहार के गढ़वा पलामू जिले के ग्राम बिजड़ी के श्री रघुनाथ दुसाद के मन में भी है, जिनका गांव सोनपुर निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना की डूब में आने वाला है।
5: हम लोग को तो लगता है कोई सा गांव अब तो नहीं मिलेगा, हम लोग को तो अफसोस हो ही रहा है। हम लोग को सोन नदी से तो बहुत फायदा है, क्योंकि उन सोन की ढाब से हम लोग पैदे जितना कमा रहे हैं जमीन से वो भी फायदा है।
0: ऐसे में शायद समाधान एक ही है, मानवीय नियति के प्रति संवेदनशील प्रशासकीय नीतियां और उन पर ईमानदार अमल। बाणसागर परियोजना के रीवा में पदस्थ भू अर्जन और पुनर्वास आयुक्त श्री प्रकाश चंद्र के स्वर में गुत्थियों को सुलझाने का विश्वास और धीरज है।
6: जो परिवार अपने सामाजिक परिवेश से विस्थापित होंगे उन्हें बसाने के लिए नए आदर्श ग्रामों की बसाहट का काम पूरा किया जाएगा। आदर्श ग्रामों से तात्पर्य यह है कि वहां हम किसी भी नागरिक सुविधाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली, सड़कें, पानी, पेयजल और अन्य शिक्षा से संबंधित बातें, इनको हम वहाँ तुरंत निर्मित करेंगे, इनकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, शासन ने इन आदर्श ग्रामों में ये रखी है कि प्रत्येक ग्राम में एक विकसित भूखंड जो 50x90 वर्ग फीट का होगा, यह प्रत्येक विस्थापित को दिया जाएगा, जो निःशुल्क दिया जाएगा।
2: औद्योगिक जल प्रदूषण हमारे दौर की एक भीषण समस्या है, सोन भी इससे अछूता नहीं।
0: शहडोल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं,
7: मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रभाव पानी में आते हैं, उस प्रभाव के फलस्वरूप पानी का pH एसिडिक हो जाता है, पानी टर्बिड हो जाता है, और पानी का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
2: सोनभद्र ज़िले में ओबरा में रह रहे पत्रकार और पर्यावरण चैतन्य संस्था के महासचिव श्री राहुल श्रीवास्तव,
8: हर महीने करीब 50,000 टन राख जो है सोन नदी में चली जाती है। उस राख के बहने से सोन जो है चौपन से पटना तक एकदम प्रदूषित हो गई है।
0: प्रदूषण की समस्या को आधुनिक उपभोगवादी जीवन दृष्टि का दोष मानते हैं रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के।

0: कुलपति और पर्यावरण जीव शास्त्री प्रोफेसर J.S. राठौर।
1: ये जो अम्लाई क्षेत्र है जो मिल वाले हैं वो पूरे नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बना देते हैं। गर्मी के दिनों में पानी कम होता है और मिल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इन दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए पूरी नदी ही मिल के अंदर पहले चली गई और फिर नीचे जो है जो पानी फेंका गया वो पूरा प्रदूषित पानी ही फेंका गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पर्यावरण है वो मूल रूप से जीवन शैली और जीवन दृष्टि का प्रश्न है। आधुनिकीकरण ने जो नदियों को जो हम माता और एक दिव्य रूप में देखते थे वो दृष्टि के ऊपर कोहरा एक तरीके से आधुनिक दृष्टि ने किया है, और यही कारण है कि हम उनकी पवित्रता को बनाने में उतना उत्साह नहीं दिखा पाते जितना कि हमें दिखाना चाहिए।
0: शायद हमें अब पुनराविष्कार करना होगा अपनी मूल विश्व दृष्टि का, जिसमें जीवन और नदी का अद्भुत तादाद में है। नदी को जैसे जीवन के प्रवाह का ही प्रतीक माना गया है,
2: उसमें सभी कुछ तो है, निरंतरता, अखंडता, दुर्निवार संकल्पशीलता और अविराम गति। आधुनिक चेतना और उपकरणों से संबद्ध होकर इसकी दुर्दमनीय पौरुषे शक्ति से ऐसी स्थायी मैत्री हम कर पावे
0: कि इसके अंचल में जीवन के उल्लास की लय में बंधे पांव थिरकते रहे अनंत तक। जैसा अनंत इसका ओज है, जैसी अविराम इसकी यात्रा है, अपनी ऊर्जस्विता में हमारी अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पंदित करती हुई।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्य माता दिति की बहन दनु का पौत्र था शंखचूड, वो भी अति पराक्रमी और बलशाली था। परंतु उसकी विशेषता ये थी कि उसने देवताओं को उनके आसनों से हटा दिया था। उसकी बाकी की प्रजा उससे बहुत प्रसन्न तथा सुखी थी। शंखचूड़ की धर्मपरायणता के कारण ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे थे। परंतु देवाधिदेव भगवान शंकर के लिए सुर, असुर और मानव समान थे। देवताओं की आपदा देखते हुए भगवान शिव शंकर ने शंखचूड़ से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी शौनक जी देवाधिदेव को युद्ध स्थल में आया देख धर्मज्ञ शंखचूड़ तुरंत अपने रथ से उतरा, महादेव को साष्टांग प्रणाम किया।
2: वाह महाभाग सूत जी, शंखचूड़ का ये कृत्य तो अवश्य ही प्रशंसनीय है। युद्ध स्थल में भी उसने धर्माचरण नहीं त्यागा, विरोधी होने के उपरांत भी उसने शिव जी की आराधना की।
1: शौनक जी, धर्मज्ञ व्यक्ति सर्वेश्वर के महत्व से भली भांति परिचित है। उनके हाथों मिली मृत्यु स्वर्ग प्राप्ति से कम नहीं होती, प्राणी को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
2: फिर क्या हुआ सूत जी?
1: दोनों ओर के असंख्य वीर योद्धा अपने अपने पक्ष की जय जयकार करते हुए युद्ध के क्षेत्र में उतर पड़े।
3: विष्णु हरे, देवाधिदेव तथा शंखचूड़ के मध्य युद्ध चलते वर्षों व्यतीत हो गए हैं। प्रतिदिन प्रातः युद्ध आरंभ होकर सूर्यदेव की अंतिम किरण पर समाप्त हो जाता है, परंतु किसी भी पक्ष की विजय के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं।
4: हाँ विधात, दोनों पक्षों के वीर बड़ी संख्या में आहत होकर गिर पड़ते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने मंत्रों से उन्हें

0: जीवित कर देते हैं।
1: अरे देखिए तो श्री विष्णु, महादेव ने अपना विनाशकारी त्रिशूल उठा लिया है।
0: अब तो शंखचूड़ का अंत निश्चित है।
2: ठहरिए, प्रभु शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए। इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। आप क्षण भर में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने में सक्षम हैं। आपके समक्ष तो मात्र एक असुर है, परंतु आप सर्वेश्वर द्वारा देव मर्यादा का हनन उचित न होगा।
1: क्या देव मर्यादा का हनन? देव मर्यादा का हनन?
2: शंखचूड़ को स्वयं परम पिता का वचन है, जब तक उसके शरीर पर श्री विष्णु का दिया परम उग्र कवच रहेगा और उस कवच की रक्षा उसमें समाया तुलसी का शील करता रहेगा, मृत्यु और जरा शंखचूड़ पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ब्रह्मा के इस वचन को सार्थक कीजिए।
3: तथास्तु। आज के लिए युद्ध समाप्त किया जाए। ब्रह्मदेव, विष्णु जी, ये वरदान और कवच आप ही ने शंखचूड़ को प्रदान किए हैं। अब आप ही मिलकर इस समस्या का समाधान कीजिए।
4: जैसी आज्ञा प्रभु।
3: आओ वृषभराज नंदी, चलें।
0: विधात, प्रतीत होता है महादेव हमसे अप्रसन्न हो गए हैं। तभी वे स्वयं कोई उपाय सुझाए बिना ही अंतर्धान हो गए हैं।
1: हमारे प्रति उनका यह व्यवहार उचित ही है कमल नयन। हम पहले अपने वरदानों से दैत्यों का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और फिर उनसे त्रस्त हो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं।
0: परंतु ब्रह्मन, हम दोनों भी तो महाप्रभु की भांति भक्त की भक्ति के अधीन रहते हैं।
1: और भक्त भी शंखचूड़ जैसा, जिसने हमारी भक्ति के साथ साथ अपनी प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया। इससे पूर्व के महादैत्य मारे इसलिए गए कि उन्होंने अपनी प्रजा को अत्यधिक त्रस्त किया।
0: ब्रह्मदेव, हम मात्र देवताओं के ही पक्षधर बनकर कैसे रह सकते हैं? विधात, हम सृष्टि संचालक हैं। असुर, मानव, सभी प्राणी हमारी प्रजा हैं। जब हमारी प्रजा सुखी है तो हम उसके राजा को दंड दें तो किस आधार पर?
1: परंतु देवता महेश्वर की प्रजा का एक अंग हैं। वे अपनी प्रजा के एक अंश पर दूसरे अंश द्वारा अत्याचार का दंड दे सकते हैं।
0: परंतु आकाशवाणी ने महाप्रभु से देव मर्यादा का उल्लंघन ना करने की विनती की है।
1: अर्थात हमारे और आपके वरदानों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कहा है।
5: नारायण नारायण नारायण, आप दोनों प्रभु फिर किन गूढ़ विचारों में लीन हो गए?
0: मुने नारद, आप अंतर्यामी होकर ऐसा क्यों कहते हैं?
5: नारायण नारायण, भगवान विष्णु, आप तो मायाविदों में भी श्रेष्ठ मायावी हैं। आपके लिए क्या असंभव है?
0: शंखचूड़ से उसका सुरक्षा कवच वापस ले लेना असंभव नहीं है नारद मुनि, परंतु तुलसी जैसी पवित्र नारी का शीलहरण अवश्य असंभव है।
5: नारायण नारायण, पर प्रभु, जलंधर पत्नी वृंदा के समय पर तो
0: हम प्रभु हैं, तो क्या हमारे हृदय नहीं है नारद? उस दुर्घटना को हम आजीवन नहीं भूल पाएंगे।
5: परंतु देव, आप स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे। वो तो देवी वृंदा की उस समय की मानसिकता थी।
0: परंतु उस मानसिकता को जगाने का कारण तो हम ही थे। एक सती को हमारे कारण देह त्याग करना पड़ा।
5: नारायण नारायण, प्रभु, आपके कारण नहीं।
0: फिर
5: ये तो उसकी नियति थी। परम पिता सृष्टि कर

0: सत्ता है, आप सृष्टि संचालक हैं, परंतु नियति सदा संघारक निर्धारित करता है। ये तो शिव लीला ही होती है, इससे ना तो हम अछूते रह सकते हैं और ना ही आप और ना ही सृष्टि का कोई भी अन्य प्राणी। वे हर गतिविधि को मार्ग पर लाने के लिए क्या करते हैं ये तो शिव ही जाने, ये तो शिव की ही महिमा है।
1: पुत्र नारद, तुम क्या इंगित करने का प्रयास कर रहे हो?
0: परम पिता, मैं तो आपका ध्यान महादेव की आज्ञा की ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। जाते समय वे आपको आदेश देकर गए हैं, आप दोनों मिलकर ही इस समस्या का समाधान कीजिए।
1: तुम्हारा कथन सर्वथा उपयुक्त है। नारायण देव,
2: कहिए विधात।
1: शिवाज्ञा का पालन तो करना ही होगा।
2: हाँ ब्रह्मदेव, ये तो हमारा परम धर्म है।

0: शीत लहर से तो मुझ ब्राह्मण का शरीर, क्या करूं, कौन मेरी सहायता करेगा?
1: अरे ये कौन जीर्ण शीर्ण सा व्यक्ति है जो स्वामी शंखचूड़ के मंडप की ओर बढ़ा आ रहा है?
2: ठहरो, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
0: मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भटक कर इस ओर चला आया हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, यदि यदि कुछ भोजन और इस शीत से बचने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो जाए तो।
1: अरे मूर्ख, इस रण क्षेत्र में तू किन वस्तुओं की अपेक्षा कर रहा है? जा, भाग जा यहाँ से, स्वामी शंखचूड़ के विश्राम में बाधा ना डाल।
0: शंखचूड़? असुरराज शंखचूड़? मैं भी तो उन्हीं की प्रजा हूँ, उन्होंने कभी अपनी प्रजा को निराश नहीं किया है। स्वामी,
1: अरे
0: स्वामी,
1: क्या कर रहे हो?
0: दानवेंद्र शंखचूड़,
1: अरे
0: मेरी रक्षा कीजिए।
1: चुप हो जाओ,
0: अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए स्वामी।
1: चुप हो जाओ।
2: भागता है या नहीं? ठहरो प्रहरी।
3: एक असहाय दीन व्यक्ति से इस प्रकार का व्यवहार करना शंखचूड़ के प्रहरी तक के लिए उचित नहीं।
0: स्वामी,
3: बोलिए ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: मैं धन्य हुआ स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ असुरराज शंखचूड़। थोड़ा भोजन तथा तन ढकने के लिए कुछ कुछ वस्त्र मिल जाए बस।
3: भोजन का प्रबंध तो हो ही जाएगा
2: प्रहरी। आदेश दैत्यराज,
3: हमने अभी भोजन नहीं किया है, उसे तुरंत हमारे इस अतिथि को दे दिया जाए।
2: जो आज्ञा।
3: परंतु विप्रवर, इस शीत से आपकी रक्षा करने के लिए
0: आप अपना ये कवच दे दें स्वामी। हाँ, मात्र एक रात्रि की ही तो बात है, प्रातः मैं आपको लौटा दूंगा।
3: ये कवच? परंतु ब्रह्मा जी तथा तुलसी ने कहा था कि मैं ये कवच कभी ना उतारूं। इसमें उसके शील का वास है, मैं जब तक ये कवच धारण करे रहूंगा सुरक्षित रहूंगा।
0: हे दानवीर शंखचूड़, मात्र मात्र एक रात्रि की ही तो बात है।
3: ये ब्राह्मण बेचारा शीत से मरा जा रहा है। ठीक ही तो है, एक रात्रि की ही तो बात है, रात्रि में युद्ध तो होता नहीं, और प्रातः ही मुझे ये कवच लौटा देगा।
2: लीजिए द्विजश्रेष्ठ, ये रहा मेरा कवच। आप भोजन करें तथा रात्रि में इस कवच को ओढ़कर शीत से अपनी रक्षा करें।

0: हाँ स्वामी।
1: तथा मुझे आशीर्वाद दें कि इस युद्ध में मेरी विजय हो।
0: हाँ स्वामी, मेरा आशीर्वाद है। असुरराज, इस युद्ध में सत्य की ही विजय होगी।
1: और इस बार सत्य मुझ दानवीर के साथ है।
2: मुने नारद
3: जी। भगवान,
2: शंख चूड़ से अपना अभेद्य कवच लौटा ले पाने में तो हम सफल रहे हैं। इस प्रकार तुलसी के शील का अपहरण भी हमने कर लिया है।
4: नारायण नारायण, अब तो महाप्रभु के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई है। भोर हो रही है, आइए हम महादेव को सूचित करें।
2: परंतु एक समस्या है नारद।
4: वो क्या विष्णु देवा?
2: अपना कवच लौटा हुआ ना जानकर क्या शंखचूड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा?
4: नारायण नारायण। हाँ भगवान, ये तो वास्तव में विचारणीय है।
2: तो ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होगा?
4: भगवान, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आता है।
2: कहिए मुने नारद।
4: आप अपनी माया से ऐसा ही एक अन्य कवच उत्पन्न करें। उस कवच को मैं किसी भी प्रकार शंखचूड़ तक पहुंचवा दूंगा और फिर इसके पश्चात देवादिदेव को सूचित कर दूंगा। आप ये मूल कवच लेकर तुलसी के पास जाएं।
2: क्या कवच लेकर देवी तुलसी के पास जाऊं? परंतु क्यों मुनिवर?
4: नारायण नारायण, इससे दो कार्य सिद्ध होंगे प्रभुवर।
2: कहो नारद।
4: पहला तो ये कि ये कवच तेजोमय है, युद्ध क्षेत्र के समीप इसका प्रभाव बना रह सकता है, अतः इसका युद्ध स्थल से दूरस्थ रहना ही देवताओं के लिए लाभकारी होगा।
2: और दूसरा कार्य कौन सा सिद्ध होगा नारद?
4: नारायण नारायण, पति की मृत्यु पर सांत्वना देने को पहुंचे स्वयं भगवान विष्णु को समक्ष देख देवी तुलसी का दुख कम हो जाएगा और इस कवच में बसा देवी तुलसी का शील भी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। नारायण नारायण।

0: असुर राज शंखचूड़, हम सर्वेश्वर हैं, हम छल से किसी को पराजित नहीं करते। अतः तुम्हें एक तथ्य से अवगत करना चाहते हैं।
1: देवाधिदेव, आपने मुझे संबोधित किया, मैं तो मात्र इसी से धन्य हो गया हूँ। आदेश करें।
0: शंखचूड़, नियतिवश भगवान विष्णु द्वारा दिया गया तुम्हारा सुरक्षा कवच देवताओं ने बदल दिया है। इस समय तुम मूल कवच से वंचित हो, अतः मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
1: देवताओं का एक और छल?
0: छल नहीं, तुम्हारी नियति ने असुर राज, ऐसा तो होना ही था।
1: परमेश्वर, यदि यही मेरी नियति है तो मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूँ।
0: मांगो, वर मांगो।
1: दया निधान, आपको तो ज्ञात है देवी राधा के श्राप से ग्रसित होकर ही मुझे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था।
0: हम जानते हैं असुरराज, तुम पूर्व काल में कृष्ण भक्त सुदामा थे।
1: देवाधिदेव, आप मुझे मृत्यु प्रदान करके इस राक्षस योनि से मुक्त करें तथा मेरे स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में गोलोक भेज दें।
0: तथास्तु। हम तुम्हें ये भी वर देते हैं शंखचूड़, कि हमारे शूल से खंडित हुई तुम्हारी हड्डियों से शंख जाति का जन्म हो।

0: शंख का जल हमारे अतिरिक्त सभी देवी देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाएगा।
1: मेरे धन्य भाग्य, धन्य भाग्य।
0: और जैसे हमारे पुत्र गणेश अग्रपूज्य हैं, वैसे ही शंख ध्वनि हर पावन कार्य का आरंभ करेगी। वो इतनी तीव्र होगी कि दूरस्थ प्राणियों को भी पूजा आरती आरंभ की सूचना देगी। शंखनाद पूजा आराधना के आरंभ का द्योतक होगा। इस ध्वनि से प्राणी पूजा स्थल की ओर अनायास खींचे चले आएंगे।
1: मेरा जन्म सफल हुआ, अब मुझे इस शरीर से मुक्ति दें।
0: तथास्तु। मुक्ति दें।

0: क्यों किया देवताओं ने मेरे साथ ये छल?
1: पुत्री तुलसी, इस छल में भी तुम्हारे कल्याण का स्वार्थ निहित था।
0: परमपिता, मुझे अपने शब्द जाल में उलझाने का प्रयास ना करें। मेरा शील भंग किया जाना मेरा ये कल्याण कैसे हुआ?
1: पुत्री, तुम्हारे द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग सर्वथा अनुचित है।
2: देवी तुलसी, आपका किसी ने शील भंग नहीं किया है, अपितु आपने अपने शील को कवच में स्थित कर एक असुर को सौंपा था। हमने तो आपके उसी शील को लौटाया है।
3: और तुलसी, तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तुम एक विष्णु भक्त को राक्षस योनि से मुक्त कराने का निमित्त बनी हो।
0: महादेव, आप
3: तुलसी, तुमने सुदामा को श्राप मुक्त करवाया है। वो पुनः अपने स्वामी की सेवा में तत्पर हो गया है। तुम्हारी तपस्या भी सफल हो गई।
0: वो कैसे देवाधिदेव?
3: तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि मृत्यु के पश्चात शंखचूड़ पुनः गोलोक जाएगा तथा बैकुंठ में तुम श्रीहरि का सामीप्य प्राप्त करोगी।
0: तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव?
3: पुत्री, अब तुम ये नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लो तथा लक्ष्मी स्वरूपा हो जाओ।
1: पुत्री तुलसी, तुमने जो ये देह त्यागी है ये गंडकी नदी में परिवर्तित हो गई है।
2: और तुलसी, परम पिता के आशीर्वाद से देव पूजन सामग्री में तुम्हारा प्रधान स्थान हो गया है। तुम्हारे पहले शरीर को वृक्ष का रूप मिल गया है।
3: हमारे आशीर्वाद से तुलसी का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाएगा।
1: और पुत्री तुलसी, इस वृक्ष के पत्तों में औषधि के गुण भी होंगे। इनका सेवन अनेक प्रकार के शारीरिक विकारों को मिटाने वाला होगा। ये पत्ते जीवन के लिए आवश्यक वायु को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखेंगे।
2: देवी, तुम हर परिवार के घर आंगन में पूजी जाओगी तथा वो घर आंगन तुम्हारे आशीर्वाद से समृद्धि एवं संपन्नता से परिपूर्ण होगा।
0: मैं धन्य हुई प्रभु शिव शंकर, मैं धन्य हुई।
4: परम ज्ञानी शौनक जी, तुलसी को पावन कर देवाधिदेव कैलाश पर्वत को लौट गए।
5: शिवलीला भी कितनी अनोखी है महाभाग सूत जी। अपने विरोधी शंखचूड़ तक को उन्होंने मृत्यु के पश्चात पवित्र शंख में परिवर्तित कर दिया और तुलसी को भी पावन दैवी देह प्रदान कर दी।
4: शौनक जी, यही तो है शिव महिमा।
5: सूत जी, शिव महिमा के अन्य रोचक प्रसंग भी तो सुनाइए।
4: हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा।

0: शौनक जी, परंतु कुछ देर के बाद।
1: श्रोताओं, वास्तव में शिव महिमा का इतना अधिक महात्म्य है कि कोई भी प्राणी उससे अछूता नहीं बचा है। आम धारणा यह है कि महाकवि तुलसीदास श्री राम के भक्त थे तथा मीराबाई श्री कृष्ण के विचारों में मगन रहती थीं, उन्हीं के भजन लिखती तथा गाती थीं। परंतु भगवान शिव शंकर की भक्ति वर्ग जाति तथा वर्ण विशेष की धरोहर नहीं है। तुलसीदास तथा मीरा ने भी शिव आराधना की है। प्रस्तुत है मीराबाई की एक शिव स्तुति।

शिव महिमा का आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 36वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक से लिया था।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

वहाँ पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुक्त हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

नवरात्र नवदुर्गानी उपासनानो आची त्रीजो दिवस आ दिवसना दुर्गा देवी चंद्रघंटा एम कहवाय ए चंद्रघंटा जी नु आपणे आ रीति ध्यान करीशु।

अर्थात प्राणरूप देवोए जे प्रकाशमान वैखरी वाणीने उत्पन्न करी अने अनेक प्रकार थी हा लोको बोले छे। एकाउ जेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल अपनारा वाक्रूपिणी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिओथी संतुष्ट थयेला अमारी पासे पधार। ओम चंद्र घंटायै नमः। अने आ साथे विश्व राष्ट्र अने समष्टिना कल्याण मंगल माटे आपणे दुर्गाजीनी वंदना करीए छीए।

नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। अनाथ, दीन, तृष्णा अने कामनाओथी व्याकुल, भयभीत, बंधनग्रस्त आ जंतु जीवनी हे देवी तमेज एकमात्र गति छो, आ जीवने तारनारा छो। हे देवी दुर्गे अपना चरणों में नमन नमन नमन। छेल्ला श्लोक में

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे मां दुर्गे, प्रचंड अने अदम्य लीलाओथी बधाय शत्रु दानवोने जड मूळ थी आप उखेड़ी नाखनारा छो, दुखोमांथी तारनारा। हे दुर्गे, तमोज अमारी एक गति आधार छो, अपने प्रणाम, अपने मां, हमारा वंदन।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

भव भव जन गुण भव

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।